0: और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स. लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी every Wednesday 7 p.m. on Free FM 89.0.
1: The following program is a repeat broadcast of a show originally aired on Free FM. Any date references may no longer apply.
2: The following program is part of the wide variety of content available from one of our community access partner stations.